0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: अगर आप इस साल हज के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं तो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के खतरे को कम करें। इसे मर्स भी कहा जाता है और ये एक गैर मामूली मगर सांस की शदीद बीमारी है। इलामात में बुखार, खांसी, सांस लेने में नई तकलीफ और दस्त शामिल है। खुद को महफूज रखने के लिए बीमार अफराद ऊंट, ऊंट के कच्चे दूध, कच्चे गोश्त और पेशाब से दूर रहें और बाकायदगी से अपने हाथ धोते रहें। अगर सफर के दौरान आपकी तबीयत नासाज हो तो जहाज के अमले या एयरपोर्ट के अमले को मुतला करें। अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद आप में मर्ज की अलामत जाहिर हों तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें और इन्हें अपनी सबका सफरी तफसीलात से आगाह करें। सफरी हदायात के लिए smarttraveler.gov.au मुलाहिजा करें। मजीद मालूमात के लिए health.gov.au/mers मुलाहिजा करें। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के महकमा सेहत, मजूरी और बबूदो ज़ईफ़ अल अमरी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड एजिंग की जानिब से एक पैगाम।
4: Sponsoring 2MFM.
5: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
4: A 2MFM sponsor.
6: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.